जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफे बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो वेस में इसकी जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो वेस में इसकी जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा। और वो भी देवशीष दास गुप्ता जी की आवाज में, चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा और उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अगला भजन जो

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो एसपीएस की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बेला जी के आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर शर्मा जी के।

और रेडियो SBS के जरिए शर्मा जी की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। अब की बार भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में विक्रम के आवाज में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

0: सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में गोपाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातों शीघ्र उद्धार करने वाली है। पिता पुत्र प्रभु से कहते हैं,

सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: अनुराधापोट वाला और साथियों की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए और इसी आरती भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

आप सभी सुनने वालों को बस एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हेबल्स अफार्ट्स दाग का दिन है, तो मतलब होते हैं यहाँ वहाँ कहीं कहीं शहरों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ज्यादा हिस्सा में कहीं कहीं शहरों में बस बरादरी वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन फिर भी जब भी हम बाहर की ओर देखते हैं तो मौसम इतना हसीन खूबसूरत मौसम तो नहीं है, बारिश हो रहा है जब भी हम स्टूडियो के बाहर देख रहे हैं। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। यहां से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, लेकिन गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है, और खास तौर पर आपके लिए, आप जो हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और स्टूडियो की ओर भी तार कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म कॉफी चाय। चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा, फिल्म ठोकर उसी फिल्म का ये गाना, अपनी आंखों में बसा कर।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रोबित है। पहला पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए है। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर है और ऐप किया है, सभी को शुभ दिन, शुभ हेमल्स फार्स दाख बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, हाँ स्टूडियो का तार का नंबर है 030-2266611। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं और इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये खास गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर रेडियो SBS का ऐप पर जोड़ तोड़ से सुनने वालों बस ऐप कर रहे हैं शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का

कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, हम आपको खबर करना चाहेंगे कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन सुपरमार्केटों को दवा दुकान जो है खुला है। आज सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा आप सभी के लिए। जब भी आप सामान खरीदना चाहेंगे तो जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए। सुबह 9 बजे से मतलब होते हैं कि इस वक्त दुकान खुल गया है, तो आप जरूर और जरूर तशरीफ फरमाइए सुपरमार्केटों को दवा के पास में। और खबर किया है, हाँ अभी अभी मुझे तार किया है कि दुकान के अंदर में बहुत सी सामान पर दाम गिराया गया है, तो जरूर आप तशरीफ फरमाइए और देखिए दुकान में कौन कौन सा सामान पर दाम बिल्कुल गिराया गया है। सुपरमार्केटों को दवा यूट्रेख शहर के अंदर में है, यूट्रेख जोयलन में है, जरूर आप अभी और इसी वक्त आप तशरीफ फरमाइए। रोटरडम शहर के अंदर में राज हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। राज आपको भी वेलकम, सुबह की वक्त ऐप किया है रेडियो SBS का, ऐप पर खुद मोर गुड मॉर्निंग कहा है, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। एक शुभ हेमल्स फाट्स डक बस पेश किया जा रहा है। जो लोग हॉलैंड देश के बाहर प्रोग्राम सुनते हैं तो लोग को खबर किया जा रहा है कि हॉलैंड देश के अंदर में आज छुट्टी का दिन है और कल जबकि शुक्रवार है, तो कल काफी लोग काम से बस छुट्टी

हालात मौसम जो है थोड़ा साथ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मौसम हॉलैंड देश के अंदर में भी काफी हसीन और खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। अभी अभी मैंने देखा, तो थोड़ी से और इंतजार कीजिए। इंडिया भारत देश में नोएडा में अनुरेश और उनकी पूरा परिवार भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। अभी अभी हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है। आप लोगों को भी एक खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है। थोड़ा सा गर्मी सा मौसम जो है हॉलैंड की तरफ भी भेजिए। यहाँ का मौसम बादल छाया हुआ मौसम, बदली बदली सा मौसम है, अंधेरा अंधेरा सा मौसम है, और समय समय पर बारिश भी हो रहा है।

तो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, राज भी रोटरडम शहर के अंदर में प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना लता जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम हलचल 1951 का फिल्म। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, काफी पुरानी फिल्म का गीत है।

की आवाज में फिल्म हलचल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रोटरडम शहर का रहने वाला राज, राज ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आसराव बीट है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। और खबर किया है राज्य कि वो भी पुरानी नगमे काफी पसंद करते हैं। तो राज आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। और आपको मालूम है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों हमेशा रोजाना सुनते हैं। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। अभी अभी डेनहाग शहर से एक सुनने वालों बस्तार किया है और कहा कि मौसम तो साथ नहीं देते हैं लेकिन ऊपर से आशीर्वाद तो जरूर मिलता है, इसलिए कि बारिश का मौसम जो समय समय पर होता है। डॉयचलैंड में यानी कि जर्मनी में हमारा प्रोग्राम भी जैन और मार्सल भी सुनते हैं इस वक्त। और आप सभी सुनने वालों को बस एक शुभ दिन पेश किया है जर्मनी डॉयचलैंड से मार्सेल और जैन हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं। और एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम दुनिया।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जर्मनी डॉयचलैंड से खासतौर पर मार्सेल और जेन ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी को एक शुभ दिन बस पेश किया है। शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मुझे मालूम है हमेशा आप सभी जर्मनी डॉयचलैंड में हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले मिलकर अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है फिर से लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म सावन उसी फिल्म का एक गाना होगा। दनहक शहर की रहने वाली कमला भी तार किया है स्टूडियो की ओर और एक खास गाना बस मांग किया है, गाना जो उनको काफी पसंद है आज की प्रोग्राम में बस सुनना चाहते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए भी पेश कर रहे हैं।

गाना है फिल्म सावन का, आपने सुना और काफी पसंद किया है। दरहाग शहर की रहने वाली कमला, कमला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और आपको मालूम होना चाहिए कि कमला की फेवरेट भरी गाना है ये, लता जी की आवाज में जो पेश की गई फिल्म सावन से। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शहरू तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। ऑनलाइन देश का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज जो 40 साल से ज्यादा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। वॉइस पॉपुलर रेडियो स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। कभी कभी होता है ऐसे कि इतना ढेर सा ऐप आते हैं तो पढ़ने में कभी कभी एक ऐप जो होते हैं सुनने वालों को मिस हो जाते हैं, हमने शायद नहीं देखे हैं, कभी कभी हो सकता है, इसलिए कि बहुत से ऐप अंदर आते हैं ना सिर्फ हॉलैंड से लेकिन

उन तमाम ऐप में से कोई ऐप कभी मिस हो जाते हैं, हमने नहीं देखे हैं। तो कल के प्रोग्राम में है एक सुनने वालों जो ऐप किए थे और एक गाना की गुजारिश किए थे प्रोग्राम में, लेकिन मैंने नहीं देखा, तो मैंने उसे कहा कि आज के प्रोग्राम में जरूर, चाहे जो भी हो जाए, आपकी गाना हम जरूर चलाएंगे। और वो है रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। गीता रॉय हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं, और पुरानी नगमे की प्रोग्राम जो है, पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं। तो रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय, जिस तरह से हमने वादा किया है, तो वादा जो है हम जरूर निभाएंगे। तो लीजिए आपकी मांगी हुई गाना द माइटी मुकेश की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

0: मैडम माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और गाना को मांग करने वाली थे रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। गीता रॉय की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आश्रो मीट है गीता रॉय गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लगता है रेडियो SBS का ऐप जो है पूरा की पूरा ओवर ब्लास्ट हो गए हैं। इतना ढेर सा ऐप आते हैं। शुभ हेमंत स्वास्थ्य भी सुनने वालों कहते हैं शुभ दिन कहते हैं और प्रोग्राम के बारे में ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं पुरानी नगमे का प्रोग्राम के बारे में। और सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए इन दिनों प्रोविंसी साइट होलांत में सुतमेर हुआ पैनाकर हुआ नौ दौरब हुआ डेलफ रेसवेक हुआ क्रिम्पन ऑन द एसल कपेला ऑन द एसल बारन द्रेख रोटरडम और ऐसे बहुत से शहरों है प्रोविंसी साइट होलांत में जहां पर हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनने वालों भी और काफी सुनने वालों भी हमारा प्रोग्राम इन दिनों प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डे आ बे प्लस द्वारा भी सुनते हैं अपना घरों में अपना मोटरकार में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलेंगे एक गाना जो पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में उत्रेख्ट लाइट्सराइन गिरधारी स्ट्रात से उत्रेख्ट लाइट्सराइन गिरधारी स्ट्रात से राजन गिरधारी भी हमेशा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मुकेश जी की आवाज में मांग किया है। किसके लिए मांग किया है ये तो एक सरप्राइज ही सरप्राइज रहेगा। और गाना ये है कि गोरा गोरा मुखरा तूने कहां से पाए है गोरी तूने जान को चुराए है। राजन गिरधारी लीजिए आपकी मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है।
1: गोरा गोरा

द माइटी मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उत्तराख लेचराइन गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी ये खास गाना आज के ये प्रोग्राम में बस मांग किया और इसी तरह से पेश की गई है। राजन गिरधारी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और इसी तरह से मॉरिशस में हमेशा और हमेशा भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम भी सुनते हैं दुष्यंत जिंगरी भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और आशा जी की आवाज में ये गाना को मांग किया है। फिल्म का नाम

0: और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग करने वाले थे मॉरिशस से खास तौर पर दुशन जिंगरी, ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से हमेशा और हमेशा सुनते ही रहना। सुनवालू घड़ी की ओर देखा जाए 10:00 प्रोग्राम में 1 मिनट व्यतीत हो चुका है। हमें जाना है रिक्लाम यानी कि खबरें की ओर जाना है, खबरें की ओर और रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकेट से इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगी और उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter de grootste, met de nieuwste collectie lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kameez, dhoti pakjes, kurta pajama, exclusieve kleding voor dulha en dulhan, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting sets, bindis, tasjes, sjaal voor barati, en ook voor grote en kleine murti. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft? Dan draag je kleding van Muskurata. Karel Roostraat nummer 4 in Den Haag. Voor info bel of WhatsApp Harpreet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Website Muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week. Open, maandag gesloten.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio SBS. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. Noodweer heeft in India zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Zeker 53 mensen zijn gewond. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. In Uttar Pradesh komt rond deze tijd vaak zulk noodweer voor. De minister-president van de Indiase deelstaat heeft opdracht gegeven voor financiële hulp aan de slachtoffers. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
4: दस बजकर प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर है 0302266611। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं और उसी वेबसाइट पर टेलीफोन नंबर होता है स्टूडियो का और रेडियो SBS का ऐप। चलिए, यहाँ से सुनने वालों की मांगी हुई गाना फिर से प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। काफ़ी सुनने वालों बस तार किया है, अभी अभी तार भी अंदर आया है और ऐप भी काफ़ी जोर तोर से अंदर आते हैं। रोटरडम शहर के अंदर में सबीना भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सबीना खबर किया है कि बारिश का मौसम भी है रोटरडम शहर के अंदर में। सबीना रोटरडम शहर से जो खबर किया है कि रोटरडम शहर के अंदर में भी भीजा भीजा सा मौसम है। न सिर्फ हॉलैंडीज के अंदर में बारिश हो रहा है लेकिन डाउटलैंड से मार्सेलो जैन भी खबर किया है अतिसन रेखन आख्तख दख इन डाउटलैंड, वहां पर भी बारिश का मौसम है ये खबर किया है जैन और मार्सेल जर्मनी डाउटलैंड से। तो प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त हम लेते हुए सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और गाना को मांग करने वाली है स्लो स्केल से, मांग किया है शरीन। शरीन ने मांग किया है अपने प्यारा प्यारा पति के लिए ईसाक रैन के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ विद लव। ये गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

दिल में ख्याल आता है। मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। और खास तौर पर शहर स्लाउस्किल, उसी शहर से शरीन, शरीन अपने प्यारा प्यारा पति ईसाक रैन के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना बस पेश किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, अन हेल फाइन डग, और खास तौर पर हिमस फर्स डग है, अन हेल मोए डग बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का प्रोग्राम स्लाउस्किल में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 14 मिनट ओवर 3, 14 मिनट वाइट हो चुका है सुबह 10 बजकर। आपको हम खबर करना चाहेंगे कि देनहाग शहर के अंदर में हॉलैंड देश का सबसे बड़ा, इंडिया भारत देश का कपड़े का दुकान होते हैं, और वो भी देनहाग शहर के अंदर में। और आपको खबर कर रहे हैं इस दुकान का मालिक और मालकिन की अभी 12 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा। जब ही आने वाले दिनों कोई भी पार्टी है, कहीं पार्टी में आप जाने वाले हैं और आप अच्छी ड्रेस में जाना चाहेंगे, तो यहां पर जरूर आप तशरीफ फरमाइए। नई नई मॉडल हमेशा अंदर आते रहते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए हॉलैंड देश के अंदर में सबसे बड़ा, इंडिया भारत देश का कपड़े का दुकान होते हैं, और वो है मुस्कुराता, मुस्कुराता देनहाग शहर के अंदर में कार्ल रोस्ट्रा नंबर 4 पर। आज दिन में 12 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो जरूर जाकर अपना हर एक सामान यहां पर खरीदिए। और जिस तरह से हमेशा हम कहते आए हैं, अगर आप दुकान के अंदर में गए, कोई भी सामान आपको पसंद आ गया है या कोई भी कपड़ा आपको पसंद आ ही गया है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको सस्ती दामों में देंगे। अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो आप हमें दुकान से तुरंत तार कीजिए। इसलिए जब भी आप कहेंगे कि रेडियो SBS आपको भेजा है, तो एक्स्ट्रा कोर्टिंग आपको दिया जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो जरूर हमें तार कीजिए। आप तो जानते हैं कि रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 24 घंटा लगातार काम करते हैं, तो जरूर आप तुरंत दुकान में से हमें तार कीजिए। आप कहेंगे कि मिस्टर SBS रबीन रेडियो SBS ने भेजा है, तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोटिंग दिया जाएगी। और आपको तो मालूम है इन दिनों सभी जाते हैं अपना कपड़े खरीदने के लिए मुस्कुराता दुकान के पास। अगर कोई भी पार्टी में आप जाने वाले हैं, तो आपको जरूर मुस्कुराता दुकान का कपड़े आपको पहनना चाहिए।

गहने और ढेर सा सामान, बदांकेस वगैरह सब के सब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, और साथ ही साथ छोटे और बड़े मूर्ति भी आपको दिया जा रहा है। मुस्कुराता दुकान आज दिन में 12 बजे से लेकर के और शाम में 6 बजे तक खुला रहेगा, तो जरूर जरूर आप तशरीफ फरमाइए। आज हेबल्स अफेयर्स दख के मौके पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोर्टिंग, और जब भी आप कहेंगे कि रेडियो SBS ने आपको भेजा है और भी कोर्टिंग। शहर में विमला मोहन हमारा प्रोग्राम भी हमेशा सुनते हैं, और एक खास गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की आवाज में। छाया फिल्म का नाम है। एड शहर की रहने वाली विमला मोहन खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है।

प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम छाया, 1961 का फिल्म, तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। एक शहर की रहने वाली विमला मोहन की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आज लो उम्मीद है विमला अपना गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शूटिंग पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम एक शहर के अंदर में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको भी खबर किया जा रहा है कि आज जबकि हॉलैंड के अंदर में छुट्टी का दिन है, हेमंत फारसदाख है, ईद शहर के अंदर में जरूर और जरूर सुनते ही

सरी फरमाइए। उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती माहदा नुंदा, श्रीमती माहदा नुंदा भी हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं और तार किया है स्टूडियो की ओर, और एक खास गाना लता जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। और मुझे मालूम है श्रीमती माहदा नुंदा को ये गाना काफी और काफी पसंद है, और खासतौर पर लता जी के गाने बहुत पसंद करते हैं। तो चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म मेरा साया, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। उत्तराखंड शहर की ये रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा लता जी की आवाज में खूबसूरत गाना को सुनना चाहते थे और इसी तरह से आज की प्रोग्राम में ये गाना बस पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। बादल छाया हुआ मौसम है, समय समय पर बारिश हो रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज हेमल्स फार्ट्सडाग का दिन, छुट्टी का दिन है। काफी सुनने वालों है जो अपना छुट्टी का दिन मना रहे हैं, हेमल्स फार्ट्सडाग जबकि है, लेकिन मालूम होते हैं कि काफी दुकान खुला है इस वक्त। हाँ, और कहीं कहीं ढेर सा एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया गया है, तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे कि बरादरी वगैरह। तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आमसफोर्ट शहर के अंदर में हमेशा हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं मन्ना सुखाई भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है कारकिया स्टूडियो की ओर, और एक खास गाना मांग किया है आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में, द गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में, गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। और ये गाना आप सभी सुनने वालों के लिए मन्ना सुखाई बस पेश कर रहे हैं।

गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में गाना पेश की गई आमसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाई। मन्ना सुखाई आप सभी सुनने वालों के लिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम मन्ना सुखाई जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-2266-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं। और सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश होगा, आन मिलो सजना फिल्म का नाम, और तार किया है स्टूडियो की ओर आमस्टरडम शहर से महेंद्र। और महेंद्र खबर किया है कि हमेशा ये प्रोग्राम घर पर गर्मा गर्म कॉफी के साथ बस पीते हैं, सुनते हैं और मांग किया है आज के प्रोग्राम में ये गाना।

फिल्म आन मिलोज से जुड़ा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में बस पेश की गई है। आमस्टरडम शहर से महेंद्र तार किया स्टूडियो की ओर और खबर किया है कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और उनके सामने गर्मा गर्म कॉफी बस तैयार है और आज की प्रोग्राम में एक खास गाना मांग किया है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। महेंद्र आमस्टरडम शहर का रहने वाला है और उनके मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है 24 मई रोटरडम अहोई में मिलकर देखेंगे जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट। जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट बस पेश होने वाले हैं और वो भी रोटरडम अहोई में सोमवार 24 मई रोटरडम अहोई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। टिकट अपना टिकट जो है खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। जुबिन नौटियाल सोमवार 24 मई लाइव इन रोटरडम अहोई बस मिलकर देखेंगे जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है टिकट खरीदिए ऑनलाइन iStripTickets.com वेबसाइट पर। एक गाना बस जो पेश होगा आशा जी की आवाज में, आशा जी की आवाज में सावन की घटा फिल्म का नाम है। दरहल शहर की रहने वाली रेशमा ने तार किया है। कुछ बातें हुए हैं, हंसी मजाक भी हुए हैं और ये खास गाना बस सुनना चाहते हैं।

की आवाज में ये गाना बसपुर गांव में पेश की गई फिल्म सावन की घटा। सावन की घटा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गाना। बस मांग करने वाली थे देनहाग शहर के रहने वाली रेशमा, रेशमा की मांगी हुई गाना बसपुर गांव में पेश की गई। देनहाग शहर के अंदर में काफी दिनों से, सालों से बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को बस सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों, आपके घर पर कोई भी खुशियां है और आप फरमाइशें देना चाहेंगे, किसी को आप सरप्राइज करना चाहेंगे, तो रेडियो SBS के जरिए फरमाइशें जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। इतनी सस्ती दामों में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। 5 यूरो पर फरमाइश, फरमाइशी का नाम 5 यूरो पर फरमाइश। आपकी घर पर कोई भी खुशियां है, विवाह है, शादी है, सालगिरह, जन्मदिन, बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है और फरमाइश आप देना चाहेंगे या किसी को आप सरप्राइज करना चाहेंगे, तो 5 यूरो पर फरमाइश बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए इस महंगाई की जमाना में। और वो भी सालों से यही दाम आप सभी के लिए रखा गया है। हर एक इंफॉर्मेशन आप लीजिए। टेलीफोन नंबर जो फीरन ट्विंत हुई पैदा 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। 0-35-65-65-60 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए, उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। आपकी फरमाइश 5 यूरो पर फरमाइश, फरमाइश के बाद आपके मेल में एक लिंक भेजा जाएगी और पूरा की पूरा फरमाइश जो है आप घर पर डाउनलोड कर सकेंगे और फिर से घर पर पूरा परिवार के साथ आप सun सकते हैं। ये तमाम सर्विस आपको दिया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए और फरमाइशी का दाम हर एक के लिए रखा गया है। लेट होने की कोई जरूरत नहीं, हर एक के लिए 5 यूरो पर फरमाइश दाम रखा गया है।

चाय जी की आवाज में रोटरडम शहर से प्रदीप, प्रदीप ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, तो चले प्रदीप का खास मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं, फिल्म अंदाज। दलित शमी कपूर और तो पर हेमा मालिनी का एक्टिंग किया हुआ फिल्म है अंदाज। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप ये खास गाना मांग किया है और प्रोग्राम के बारे में काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है।

uit de film Andaz. Andaz, een film Kagit Bishkigai Mohammed Rafi aur Asha Jiki Awaz mein. Rotterdam shahar ka rehne wala प्रदीप का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है. प्रदीप शुभिंग पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना, प्रोग्राम में इसी तरह से भाग लेते ही रहना. अंदाज फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई. सुनने वालों, 2 मिनट बाकी है 11 बजे में. एक आखिरी और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा. हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम परस मनी. परस मनी फिल्म का नाम होगा मुकेश और लता जी की आवाज में. उत्तराखंड शहर की ये रहने वाली श्रीमती यानी महेश, श्रीमती यानी महेश की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है. और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना बस पेश किया जा रहा है.

प्रोग्राम से ये गाना आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गए। है बस वार्षिक का दिन है और मतलब होते हैं छुट्टी का दिन, फिर भी यहाँ वहाँ हॉलैंडीज के अंदर में दुकान जो है खुला है, जैसे कि सुपर बार तोको दबा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक खुला है। आप सभी के लिए सामान आप खरीदना चाहेंगे तो जरूर यहाँ पर आप तशरीफ फरमाइए और अभी 12 बजे से आप दरियाफ्त कर सकते हैं हॉलैंडीज का सबसे बड़ा इंडिया भारत देश का कपड़े का दुकान जो है मुस्कुराता, अभी 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा। कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 देनहाग शहर के अंदर में। मौसम जो है आज का बदली बदली सा मौसम, कभी बादल छाया हुआ मौसम, कभी धूप का मौसम। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन, रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में KK एंड बेला सैंडे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में के एन बेला सेंडे की आवाज में 6 मिनटों फोर हाफ 12 स्टूडियो टाइट हो चुका है। आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन 14 तारीख में एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इस प्रोग्राम में कुछ मिले जुले नगमे पेश होगा। चलिए गाना बाबू सुप्रियो की आवाज में पेश किया जा रहा है उनका एक खास एल्बम में

सुन रही हूँ की आवाज में गाना पेश की गई वादा कर ले साजना। हाथ की सफाई फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। टेम्स रेफ 207 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

पेश किया जा रहा है। चले गाना आपकी बार जो पेश होगा सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, द मूवी फिल्म, उसी फिल्म से ये गाना।

सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए तुम पास हो। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और पूरा की पूरा हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों तक DAB प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। एक और काफी खूबसूरत गाना

0: 12 मिनट बाकी है 12 बजने में।
1: मेरा दिल भी कितना पागल।
0: रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं। चले प्रोग्राम में गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है कुमार सानू एनल का जी की आवाज में।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपके बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में। अभी आपने सुना सरो मीठे सुनकर राव ने बेहद पसंद किया है। चले गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म दोन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई।

की आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार की तना, श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कृष्ण मूर्ति और अभिजीत की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में द फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है। तेरे बिना

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म जवानी दीवानी की ओर। द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द रॉकेरो क्वीन द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले।

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम जवानी दीवानी है। चले प्रोग्राम में अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर और उषा खन्ना की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम जॉन

0: साल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
1: प्यार कर ले।
0: गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खास तौर पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसका सॉन्ग तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद। दिस लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

0: gezongen door Sonu Nigam, heeft u gehoord in het programma Gitong Kelleher het liedje Shirt. Het kwam uit de film Milan Talkies. En uit de film Hamraas komt gezongen door Udit Narayan in het programma Gitong Kelleher via Radio SBS. Toen is zindagi mein aake zindagi badal di.
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से
0: रामा गीतों के लहर फिया रेडियो एसपीएस तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी।

0: तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में आप सुनिए सावन में लग गईया के दिल मेरा।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ें हैं हमारा दिलरुबा।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरे हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आए द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, गजल दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत एंड गजल दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कंत प्यार लो प्यार।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

कि तू ही तो है। काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.